जवानी। दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

एक औरत तबाह करेगी इस गार को, जाओ अपनी आंखों से देख लो। जो साथी थे आज दुश्मन बन चुके हैं, तबाही से पहले उन्हें रोक लो।